नानक हर संग मीत, धन वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवां। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करें नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संतो सुख हुआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। रब रहे आ सबनी जाई रहाओ, तुर की बाणी आई। तिन सगले चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना। हर नानक साच बखाना, तुर की बाणी आई। तिन सगले चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना। हर नानक साच बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, वडभागे हां जिथे आप जीआं ने शब्द चौंकी उपरंत सोदर रहिरास साहिब जी दी पावन बाणी दे पाठ सरवण कीते ने। सरबत भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का, सेवा निभाएंगे भाई अंग्रेज सिंह जिथे समेत। आओ तिन्हां दे जथे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। गुरद्वारा साहब विखे नगर दुसांझ खुरद, नगर ठीकरीवाल, भाई इकबाल सिंह संधु परिवारों वालों तीन श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ ने, जिन्हों के भोग एतवार सवेरे 9:30 पैणगे, उपरंत हफ्तावरी दीवान सजनगे। परिवार ते नगर निवासियों वालों बेनती आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। सरवण करते हाँ गुरबाणी शब्द कीर्तन। भुला चुकों की खिमा, आप संगतों का धन्यवाद। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।

जुगो जुग टालो, चवन शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु, बाणी के बोहित अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा मेले दे सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब गुरुदेव दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुरु की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत जिथे आप जी ने सतगुरां दी अमृतमयी बाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने समा है भगत साहिब मान दी चल रही पावन बाणी दी लड़ीवार विचार दा। शेख फरीद साहब दे श्लोकां नूं आपां लड़ीवार विचार रहे हां। तकरीबन 7 श्लोकां दी विचार आपां हुण तां कीती है। आओ अगलेरी विचार नूं आरंभण तों पहलां दर घर दी मर्यादा नूं निभाउंदिआं फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी ने जदों मनुख दे जीवन दे मनोरथ दी गल कीती है ते सतगुरु ने ये बड़ा स्पष्ट किया है कि बंदे दा जीवन कल्ला खाण पीण हंडाउण पदार्थां नूं भोगण लई नहीं बनिया, बल्कि इको जीवन है। इस विच आपां उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणां नूं, उहदी इबादत नूं चेते करना है, उहनूं याद करना है ते जिन्ना भी ये जीवन है इहनूं रब दी भै भावनी दे विच जीणा है। एक बड़ा स्पष्ट बोल असीं हर रोज़ सतगुरु दी बाणी दा सोदर दा पाठ जदों करदे जां सुणदे आ पढ़दे आ वी भई प्राप्त मानुख दे उरिया गोविंद मिलण की ये तेरी बरिया, रब्बी मिलाप दी तेरी ये वारी है। इस करके ये जिहड़ा इको एक तेनू जीवन मिलिया है इहनूं चंगी तरह होश विच रह के जी। शेख फरीद साहब ने अपने श्लोकां विच जिहड़ा अज श्लोक साडे सन्मुख रखिया है उन्होंने ने कहा है भी फरीदा जा तो खट्टण वेल। खट्टण वेल दा अर्थ हुंदा है कुछ खट्टण दा वेला, जिवें बच्चा जिहड़ा हुंदा है उहनूं मां उहनूं पिता ये गल समझाउंदा है भी पुत हुण तेरा पढ़न दा समां है, पढ़ ला। उहदा तेनूं लाभ इह होवेगा कि बाकी जिहड़ी तेरी जिंदगी है, आउण वाला जिहड़ा तेरा जीवन है, उह तूं आराम नाल बतीत कर सकदा है। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 5-10 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,

बख्शिश रूप पावन मुखवा गुरु साहब जी ने बख्शा है पावन हुक्मनामा पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज तिना दी मुबारक रसना विचों उच्चारण किया होया ये मुबारक शब्द जो आप जी ने हुक्मनामे के रूप के मुख वाक के रूप के श्रवण किया है पातशाह मेहर करन बख्शा पावन उपदेश साडी सब की जिंदगी का जीवन का आधार बने ये गुरु चरणा में अरदास है। ये नाल ही सजे दवान की संपूर्णता है समाप्ति है। तीन श्री अखंड पाठ साहब गुरु की संगतों वालों जो आरंभ करवाए गए हैं जिदे विचों पहला अखंड पाठ साहब नगर दुसांझ खुरद की संगत वालों जो आरंभ करवाया गया इस तरह दूजे नगर की सेवा नगर ठीकरीवार जो ठीकरीवाला जो बरनला डिस्ट्रिक्ट संगत ने उन्होंने वालों अखंड पाठ साहब की सेवा हो रही है। इस तरह गुरु चरणा च वरसाया हुआ सेवक परिवार भाई इकबाल सिंह जी संधु परिवार परिवार वालों तीजे श्री अखंड पाठ साहब की सेवा हो रही है। इन परिवारों वालों आईया संगत सेवावान गुरु के लंगर द्वारा हो रही ने परसों आरंभ किए श्री अखंड पाठ साहब के भोग संडे सवेरे 9:30 बजे के करीब पाए जाने हैं उपरंत हफ्तावारी समागम इसे मेन दीवान हाल में सजन गए तो आप जी ने तीनों दिन जरूर हाजरिया भरनिया और लाहे प्राप्त करने राह प्रशादी देख का वर्तारा हो रहा है। संगत वास्ते परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार किए गए हैं सब ने छक के जाने की कृपालता करनी सुखासन की सेवा थोड़ी देर रुक के होएगी क्योंकि सिंह के सहज पाठ साहब चल रहे हैं तो इस थोड़ा रुक के किया जाएगा सुखासन। गुरबाणी सुन दिया चाहवन संगत हाल नंबर 2 अखंड पाठ साहब चल रहे हैं उत्थे बैठ के आप जी गुरबाणी पाठ का लाहा लै सकते हो। धन्यवाद सारिया संगत का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

तुम किया सकाल ग्रस्त सब लोग से आने उठ पंडित पै चले निरासा मंदरे सरयो ने कह काजा पहो न रघुबत राजा रहाओ बन खंड जाय जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया ना दी बेदी सब दी मोनी जम के पटा लिखाया भगति नारदी हृदय आई भगत नारदी हृदय आई काश कूश तन दीना राग रागने डिंब हुए बैठा उन हर पै कह लीना परयो काल सब जग ऊपर माय लिखे ब्रह्म ज्ञानी कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जे जानी कर दूजा दुए दुए लोचन पेखा हो हर बने और न देखा नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहण न जाई हमरा भरम गया पो भागा जब राम नाम चित लागा रहाउ बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमासे आई बाजीगर स्वांग सवेला अपने रंग रवै अकेला कथनी कह भ्रम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई जाको गुरमुखिया बुझाई ता कहरदा रहा समाई गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन देह हर लीनी कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता जा कह निगम दूध के ठाटा समुंद बलोन को माटा ताकि हो बलोवन हारे क्यों मिटै गुछास तुहारी चेरी तू राम ना कर सपतारा जग जीवन प्राणिया दारा रहाओ तेरे गले तोक पग बेरी तू घर कर रमैया फेरी तू अजना चेतस चेरी तू जंब परी है हेरी प्रभ करण करावन हारी क्या चेरी हाथ बिचारी सोई जागी जित लाई तित लागी चेरी तैस मत कहां ते पाई जाते भ्रमकी लीक मिटाई सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया जे बाजन जी आ जाई जो मिलन ता काल अकाई सद जीवन भलो कहा ही मुए बिन जीवन नाही अब कहिया अब क्या कथी है ज्ञान विचार निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत ने हारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया छोड़िया जाए न मूका औरन पै जाना चूका जो जीवन मरना जाने सो पंच साल सुख माने कबीरा सो तन पाया हर पेट त्या मिटाया क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या हुई जो सहज न मिलियो सोई हर का नाम ना जब सगवारा क्या सोचा बारम्बारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्ती अगोचर लही है बस्ती अगोचर पाई घट दीपक रिया समाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मनमान्या मनमान्या लोग ना पतीजा ना पतीजा तो क्या कीजा हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठ है कहा बिलो वसपानी काया मांजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना रहाओ लोकी अड़सर तीर्थ नाई को रापण तो न जाए कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी सूरठ एक ओंकार सत गुरु प्रसाद भू प्रपंच कर परतन लियावै सुरदारा पयान लुटावै मन मेरे भूले गपना की जय अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ छिन छिन तन चीजा जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की न जपै सवेरा संतो मन पवन सुख बनया किछ जोग प्राप्त गणिया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनत बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल बेट्यो बकरिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सूरठ भूख है भगत ना की जय या माला अपनी ली जय हो मांगो संतन रेना मैं नहीं किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे अपना देवता ले वो मंगे रहाओ दुसर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना दुसर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जवाले खाट मांगो चौपाई सराहना वरतलाई ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही किता लोभ एक नाउ तेरा मैं फब्बो कह कबीर मन मान्या तो हर जान्या राग सूरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा नाद समाई लो रे सदगुर पेटले देवा रहाव जा चिलमिल कर संता ता अनहद शब्द बजनता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही निरै नाही दूर निजात मेरा भरपूरता जानहद सूर्य जियारा ता दीपक जिला छंछारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सह समानिया कर चौथा सूरठ
फाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दे हो, मोको बेटी दियो बताई हो। री बाई बेटी देण ना जाई, देख बेटी रियो समाई, हमारा बेटी प्राणे धारा रहाओ। बेटी प्रीत मजूरी मांगे जो कौ छान छवावे हो, लोक टंब सबोते तोरे तो अपन बेटी आवे हो। ऐसो बेटी वंदना सा को सबे अंतर सब ठाई हो, गुंगे महामृत रस चाख्या पूछे कहण ना जाई हो। बेटी के गुण सुनरी बाई, जलद जलद बांध ध्रु थापे हो, नामिक स्वामी सी बहोरी, लंक भीखण आपे हो, सूरठ कर तीजा, अणमड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कनहर गाजै, बादल बिन बरखा होई, जो तत बिचारै कोई। मोको मिलो राम सनेही, जै मिल गया दे सुदेही रहाओ। मिल पारस कंचन होया, पीतर कुमस बानिया, मिल पारस कंचन होया, मुख मनसर रतन परोया, निज भाओ भया परम भागा, गुर पूछे मन पुथिया, गजल पीतर कुंभ समान्या, सब रामे कर जान्या, गुर चेले मन मान्या, जन नामे तत पछान्या, राग सूरठ बाणी भगत रविदास जी की, ओंकार सत गुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगमन जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानी हो न तैसा रहा। नरपतेक सिंहासन सोया, सुपने पया पिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, राज प्रियंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया, अनिक कटक जैसे फूल पर, अब कहते कहण ना आया, सर्वेक अनेक स्वामी, सब घट पुग वह सोई, कह रविदास हाथ पै नेरह, सहजय सो होई, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बाते, अपने छूटने को जतन करो, हम छूटे तुम यारा दे, मादे माधवे जान तो जैसी तैसी, अब कहा करो गो ऐसी रहाओ। मीन पकर फांक्यो अल काट्यो, रांद कियो वो बानी, कंठ कंठ खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ न बिसरयो पानी, आपन बापै नाहीं किसी को भावन को नहीं राजा, आपन बापै नाहीं किसी को भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत ब्यापियो, भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगत एक बाटी, अब एक कास्यों कही है, जा कारण हम तुम्हें आरा दे, सो दुख अजू सही है, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अभिवेकै, राजेंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो केह लेखै, ना बिचारियो राजा राम को रस, जेह रस अनरस भी सृजा ही रहाओ। जान अजान पे हम बावर, सोच असोच दिवस जाही, इंद्र सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं कियत यान, अचरियत यान कछ समझना परै, ये प्रमाय कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया, सुख सागर सुतर सुरतर चिंतामण, काम तीन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनित कर तल ताके, हर हर हर ना जपै रसनावर, सब त्याग वचन रचना रहाव। नाना ख्यान पुराण बेद बेद, चौथी सखर माए ब्यास विचार, कहियो परमार्थ राम नाम, सरनाही सह समाध उपाध रहत फुन, बड़े पागले विलागी, कह रविदास प्रगास हृदय धार, जन्म मरण पै भागी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पए हैं चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों तोर कवन सर कवन स्यों जोरे रोहाओ, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी, जा जा जाओ ताहा तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा, तुमरे भजन कटे जम्फा सा, भगत हित गावे रविदास, जल की पीत पवन का थम्बा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंकी बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए गो पसम की ढेरी, उचे मुंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा राम चंद, कह रविदास चमारा, चमरट्टा गांठ ना जन्नई, लोग गठावे पनही रहाओ, आर नहीं जेह तोपो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खराबी गुचा, हाओ
हौ बिन गांठ जाय पहुचा रविदास जपै राम नामा मुहे जमस्यो नाई काम राग सोरठ बाणी भगत भीखण की एक ओंकार सतंगुर प्रसाद नैनो नीर बह तन खीना पहे केस दुदवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै क्या करै परानी राम राय हुए बैद बनवारी अपने संतां ले बारी रुहाओ माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही ऐसी बेदन उपच करी पई वाका औखद नाई अरका नाम अमृत जल निर्मले एक औखद जग सारा गुरु प्रसाद कह जन भीखन पावो मुख द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन बुदार्थ पाया नक जतन कर हृदय राखी अर्थ न छपै छपाया हर गुण कहते कहण न जाए जैसे गुंगे की मिठियाई रहा रसना रमत सुनत सुख श्रवणा चिर चेते सुख होई को भीखन दुए नैन संतोखे जा देखा ता सोई तनासरी महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजोनी साहिबं गुरु प्रसाद जियो डरत है अपना कैसो करी पुकार दुख विसारण सेवे सदा सदा दा तार साहिब मेरा नित नवा सदा सदा दा तार रहाओ अनदिन साहिब सेवी अंत छिड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सतगुर बाण जाओ रहाओ सरबंग साचाए कह दूजा नाही कोई ताकि सेवा सो करे जा को नदर करे तुद बाज प्यारे के वरा सावड़े आई देह जित नाम तेरा लाग रहा दूजा नाही कोई जिसे आग्या प्यारे जाए कहा रहाओ सेवी साहब अपना एवड़ ना जाचो कोई नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ तनासरी मोहला पहला हम आदमी हाँ एक दमी मोहलात्मा तना जाना नानक बिनवै तसैसरे वो जाके जी प्राणा अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा नानक साहिरे कहता है सच्चे पर्वत गारा जे तू किसा ना दे मेरे साहिबा क्या को कड्डै गहना नानक बिन मैं सोख छिपा गया पुरब लिखे का लहना नाम कसम का चेतना किया कपटी कपट कमाणा जम दुआर जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिया किस कहिया पाल रहे हम रहण ना पाया जीवत अमर रही है तनासरी महला पहला कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरै नहीं जाए तपै हियाओ जीड़ा बदलाए सिरज सवार साचा सोए तिस विसरी है चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ वखर नाम देखण कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोक पतीने ना पत होए ता पत रहे राख्या जा सोए जा देखा तरया समाए तुद बिन दूजी नाही जाए जे को करे कीता क्या होए जिसनों बख्शै साचा सोए होनी उठ चलना मोहत के ताल क्या मोदे सा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए विण नदरी नानक नहीं कोई तनासरी मोहला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवै रह लिवलाए आत्मा परात्मा को करे अंतर की दुबदा अंतर मरै गुरप्रसाद ही पाया जाए हर स्यो चित लागै फिर काल ना खाई रहाओ सच सिमरिया हुए प्रगास ताते बिख्या मेरे उदास सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलत्र विच अंगत पाई ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तस्या गत रह साहे भावै सो प्रवान सो सेवक दुर्गा प्रवान सो सेवक दुर्गा भावै मान सतगुर की मूरत हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करै सो सेवक जम ते क्या सड रहै पनित नानक करै विचार साचे बाणी स्यों तरै प्यार ताको पावे मुख द्वार जप तप सब यो सब दै सार तनासरी महला पहला जियो तप तह बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विलाए बहुता बोलन चखन होए बिन बोले जाने सब सोए रहाओ जिन जन कीते अखे नाक जिन जेहवा दित्ती बोले तात जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजा पौने आख्या सब जाए जे तांबो प्रीत सुवा सबा कालक दागा दाग दाग दोस मुए चलिया लाए दरगा बैसण नाही जाए करम मिलाए आखण तेरा नाओ
लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबै फिर होवै सार, नानक साचा सरबदा तार। तनासरी महला पहला। चोर सा लाहे जीतना भीजै, जे बदी करे ता तसुना चीजै। चोर किया मैं भरे ना कोए, चोर किया चंगा के होए। सुन मन अंधे कुत्ते कुड़ियार, बिन बोले बुझिय सचे यार रहाओ। चोर सवालियो चोर सियाना, खोटे काम लेक दुगाना। जे साथ रखिए दीजर लाए, जब परखिए खोटा हो जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, या बीजा पे ही खावे, जे वड़ियाइया पे खाए। जही सुरत ते है राहे जाए, जेसो कूड़िया कूड़क बाड़ पावे। सब आखो संसार तुद पावे, दी परवान नानक जाने जान सुजान। तनासरी मल्ला पहला। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े ए आना दरगा घड़ी है। तीने लेख खोटा काम न आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए। खरा खराया ख सब कोई रहाओ, का दी कूड़ बोल मलखाए। ब्राह्मण नावे जी आकाए, जोगी जुगत न जाने अंध। तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने। अंगर प्रसादी को जाने का जी, सो जो उल्टी करे गुरु प्रसादी जीवित मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है, आप तरह सगले कुल तार है। दान संबंध सोई दिल तो वह मुसलमान, सोई मल खो वह पढ़िया बूझा। सो प्रवान जिस सिर दरगाह का निशान। तनासरी महला पहला का तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही, नाही सतका ढब। थानष्ट जग भ्रष्ट होए, डूबता है जग। कल मैं राम नाम सार, अखीता मीट है नाक पकड़े। ठगन को संसार रुहाओ, आंट से ती नाक पकड़े। सूझ ते तिन लो, मगर पाछा कछु ना सूझै। मगर पाछा कछ न सूझै, यो पद में लो। खत्रिया ता धर्म छोड़िया, मलेच पाख्या गही। सृष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सो दे करे बेद ब्यास। बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास। तनासरी महला पहला। आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जिनक मोती। धूप मले आंद लो पवन चवरो करे, सगल बुनराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई पवखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत भेरी, रोहाओ सह सव नैन। नन नैन है तो एक सह समूर्त, नना एक तो सह पद बिमल। नन एक पद गंध बिन, सह सब गंध उचलत मोही। सब मैं जोत, जोत है सोए तिसकै चंदन। सब मैं चंदन होए गुर साखी, जोत प्रगट होए ज्योत सुभाव है। सो आरती हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो में आई पियासा, कृपा जल देहि नानक सारंग। हो जाते ती रहना वासा। तनासरी महला तीजा। कर दूजा चौपदे ओंकार सतगुर प्रसाद। यो तन खोट नानक खुटै ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए। अपने सतगुरु को सद बल जाई, गुर कृपा त्यार मन वसाई। सेत नवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया। हर कृपा ते वसै मन आई, रहाओ अवगुण काट गुण हृदय समाए। पूरा गुर कै सह सुपाए, पूरा गुर की साची बाणी। सुख मन अंतर सह समाणी, एक चरज जन देखो पाई। दुबदा मार हर मन वसाई, नाम मुलक न पाया जाए। गुर प्रसाद वसै मन आए, समय वसै प्रभे को सोए। गुरमति कट प्रगट होए, सहज जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम लै मन मानिया। तनासरी महला तीजा। हर नाम तन निर्मल यात्या पारा, गुर कै शब्द परे पिंडारा। नाम तन बिन होर सबे खजान, माया मैं जलै अभिमान। माया मोहे जलै अभिमान, गुरमुख रस चाख्या कोए। ते सदा आनंद होवै दिन राति, पूरे भाग प्राप्त होए रहाउ। शब्द दीपक वरतै त्यो लोए, जो चाख्या सो निर्मल होए। निर्मल नाम हो मैं मल धोए, साचे भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाख्या सो हर जन लोग, ते सदा हरख नाही कदे सोग। अप मुक्त अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै। बिन सतगुर सा मुई बिल लाए, अन दिन दाजा सात न पाए। सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा। सदा तन अंतर नाम संभाल, जी जंत जनै प्रत पाले। मुक्त बुद्धार्थ तिन को पाए, हर के नाम रथे लिव लाए। गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाव। यो हर रंग गुड़ा धन फिर होए, सांत सिगार रावे प्रभ सोए। हो मैं बच प्रभ कोई ना पाए, मूलो पुला जन्म गवाए।
ਗੁਰਤੇ ਸਾਥ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਸਬਦ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਤੇ ਆਏ ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ ਨਦਰ ਕਰੈ ਮੇਲਾ ਵਾ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾ

बीत रहाओ। चंदन लेप होत देह को सुख गर पद भस्म संगाइत अमृत संग नाही रचयावत बिखेठ गोरी प्रीत उत्तम संत भले संजोगी।

रवे हो सब मदे जत कतहु पेखो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतत पावन गसाई कोट सुख आनंद राज पाई मुक्त निमख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बूझी है नानक तृपत अगाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने बस अपने त्रै गुण भवन चतर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या एहो जंत बेचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे व्याध तब हूटो रहाओ नै सुनिए नै मुकते।

कर जोग जोगत कर जैन। अमृत नाम नर मूलक हर जस तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रभु भेटे नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे। अस्थिर करे नह चल एह मनुआ, बहुड़ न कतहु धावे। है को ऐसो हमरा मीत, सगल समगरी जियो हियो देओ। अर्प्यो अपनो चीत रहाओ, पर धन पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागे। संत है संग संत संभाखण, हर कीर्तन मन जागे। गुण निधान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला। मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गपाला। तनासरी महला पंजवा, हर हर लीने संत अवार, हर के दास की चित बह बुरियाई। तिस ही को फिर मार रहाओ, जन का आप सहाई हो। निंदक भागे हार, भ्रमत भ्रमत ऊहा ही मो।

जन को प्रव अपने खथाना जो तू खर कराव स्वामी सामसरत परवान रहाओ पत परमेश्वर गथ नारायण धन गोपाल गुण साखे चरण सरन नानक दास हर हर संथी एवं जाति तनासनी महला पंजमा सगल मनोरथ प्रवते पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में जन न दीने कन्न दुतर भाखे जनकै मन सचा विश्वास वेख बेख स्वामी की सो पाओ आनंद सदा उलास रहाओ।

नहचर राज खमाओ। तुम कर आव मेरे मीता, तुमरे दुखी हन अपन बारे, अपना भई बती तो रहाओ। प्रगट खीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थके, कर मंगल वाजे न तो वाजे, अपने खसुन वाजे।

गुर का बचन बसै छिनले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहिन साखे जल ले रहाओ। निरतन कोथन अंदले कोटख, माता दूजे असे बोले, सागर में बोत पायो हर नानक, खनि कृपा कर पाले। तनासनी महला पंजमा, पै कृपाल दयाल खवंदा, आमदर देस जाई नाम नेतो, रिद सदहारो लाग रही जन पाई। संतन को अणदो सिंह लही जाई, ग्रह पार ठाकर भक्तन ख रव रहा सर्व ठाही रहाओ। ताको कोई न पहुंचन हारा, चाखे अंग गुसाही, जम की द्रास मिटे जे सिमरतो, नानक नाम ते आई। तनासनी महला पंजमा, दर्भवंतो दर्भ दे गर्भ, भूवंत अवमाने, राजा जाने सग राज हमरा, त्यों हर जन टेक स्वामी, जे को अपनी ओड़ सुमारा।

ठाकर गए आत्म रंगो सरनी पावन नाम त्यावनो सह समावन संग रहाओ जन के चरना वचे में रही अरे संग पनीता देही जन की तूर देहो कृपा न तो नान कह सख एही।

तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोए न, तुमरायम सगल समग्र ही तुमरे, तुम ते हो सो तुमरी गात मेत नानक दास, तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी अके ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार, श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै, गुरु नानक लई त्याहे फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिठ सबद हो जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौंदे आवे ताए, सब थाई होई सहाय दसवीं पातशाह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, ओ सब थाई होई सहाय। तसो बादशाहियों की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसी सब। बोलो जी वाहे। पंजां प्यारियां चौं सब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया, वंड छकिया देख चलाई तेग वाई दे के लटकीता, तिना गुरमो प्यारियां सचारियां दी कमां सिंघां सिंघणियां, धर्म सी दिते दबा चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल, तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लोहाईयां, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, असह ते कह असार दे शीदो सिकिद केसा, सवासा संग नभाई धर्म निहारिया, तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसी सब। बोलो जी वाह। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसी सब। बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी,

तीन बचन महाराज ने इकट्ठे रखे, तीन बोल तीन शब्द, पहला आख्या भगत, दूजा ज्ञानी, तीजा तपा। वैसे तिना विच एक फर्क है। भगत दे बारे कहिंदे वे जिन्हों भगती का पता है, ज्ञानी जिन्हों ज्ञान कमाउंदा जिहड़ा, ते तपा ओह हुंदा जिहड़ा श्री

सर्व गुणा भरपूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्व रहा भरपूरे, ताकि शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहारे।

पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा। गुण निधान मेरा प्रभ करता,

राग सोही महला पांचवा शांत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो समल थकी जय हो कदे ना बोले कोरा कोड़ा बोल न जाने पूरन भगवान औगन को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं भन्ने काले कटकट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हरे अमृत सज्जन मेरा हो विषम पई जे हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जे हो चरण कमल पग शारा प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे बड़े वर्ण कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल महल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पव जल उतरे पारा नानक सरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत न पारावारा हो निमक ना छोड़ा जी हरन प्रीतम प्राण अधारो गुर सतगुर कहया जी सच्चा अगम विचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हो मैं विनती गाठे सबके मद सब हूं ते बाहर राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मन है सुधारो मैं खोजत खोजत जी हर नह चल सो कर पाया सब अतरव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभे बनासी हो तिसकी दासी मेरे ना आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी छिप जाए सत्र सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधिक मुन जन ते आया नानक सरन कृपा निध स्वामी बड भागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूहे वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया करे अपने मोहे दूजे पाए मिठा करके खाया बहो सदहो बदया रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए बिजोग गुरमुख होवे सो लपटिया हर राती साज सिंगार सहज सच पिर राव्या हर नामा और तार आज्ञाकारी सदा सुहागन आप मेली करतार नानक पिर पाया हर सच्चा सदा सुहागन नार महला तीजा सोहवइये निमाणिये सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचाया न आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहेदा तेरा हुक्म निराला आपे आप वरतदा आपे प्रतपाला सलोक महला तीजा सुहूब ता सुहागणी जा मन लहे सच नाओ सतगुर अपना मन लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ ऐसा सिंगार बनाए तू मेला कदे ना हो वही अहनस लागे पाओ नानक सुहागण का किया चहन है अंदर सच मुख उजला खसमे महे समाए महला तीजा लोका वे हो सुहबी सुहा वेश करी वेसी सुह न पाइये कर कर वेश रही नानक तिन्नी सोह पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सो थिए इन विद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पीत संसारा तेरा हुक्म न जापई केतड़ा सच्चे अलक अपारा एक नानो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सो ही सचियारा श्लोक महला तीजा सोह वइये सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ किन मह झूठ सब बिन सजाए ज्यो निकटे ना बिरख की जाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सकत सेवे कराई मन वसया हर अमृत नाओ

होमे गर्भ निवारिये, काम क्रोध अहंकार लभ लोभ पर जालिये, नाम मिले आधार एहनस नव तन निर्मला, मेला कबहू ना होए, नानक ए विध छुटिये, नदर तेरी सुख होए। महला पहला इको कंत सवाइया, जित दर खड़े आए, नानक कंते रतियां पुछ है बातड़िया है। महला पहला सबे कंते रतियां, मैं दहागण केत मैं तन अवगण ए तड़े, खसम न फिर चित। महला पहला हो बलिहारी तिन को सिफत जिना दे बात, सब राती सोहागणी एक मैं दुहागण रात, पौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर, गुरमुख लेहु मलाए जन पावे नाम हर, अनहद शब्द बजाए ज्योति।

राम को नाम न कबहू लीना, राम न जपहो कवन मत लागे, मर जाइये बे को क्या करहो अभागे रहाओ, दुख सुख कर कै कटम भजवाया, मरती बार एक सर दुख पाया, कंठ गहन तब कर्ण पुकारा।

सुही कबीर जियो अमल सरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलहो सताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फरमान दरगह का आया रहो।

पिरह बिहोन कतहे सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभो मिलाए। बीदन खूही मोंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा।

पर सरवर जब उछले तब तरण दहेला, हाथ न लाए को संभड़े जल जाली टोला, हाथ न लाए को संभड़े जल जासी टोला। रहाओ एक अपने पतली सह के रे बोला, दुद्धा थनी न आव।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौपदे कर पहला। तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कवन बिडाई, जो तू देह सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई। तेरे गुण गामा देह बुझाई, जैसे सच मह रहो रजाई, रहाओ जो कुछ हुआ सा।

हम नाही चिंत पराई रहाओ, अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी। जल थल महियल भरपूर लीना, घट घट जोत तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर

ऐसा नाम निरंजन देव हो जाचक तो अलख अपेयो रहाओ माया मोह तरकटी नार ढूमे कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसे बेजात न होए एके को नाही पौ कोए करता करे करावे सोए शब्द मुए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे।

0: मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परहो, रहाओ काया नगर मह, राम रस उत्तम क्यों पाइये उपदेश जन करहो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संत चाख दिखहो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन विसरे सब बिखरस हो, राम नाम रस राम रसायन हर सेव हो, संत जनो चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजहो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वेश को,
1: हर मंत्र जपानी, गौर ईशो सोई पाल पावो, हर बोलो गुरमत बानी रहा, अनक पाप चितवे बहु तेरे, सा बात सा हुवे जे बात, हवैनी तैनी मन की मत, त्यागो हर जन इह बात कुठैनी, हनदन हर हर नाम त्यागो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत समत तेरे बस, स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो जो भावे तिबे बोला नी। बिलावल महला चौथा, अनद मूल त्यायो परखोतम, अनदन अनद आनंद धर्म राय की कान चकाई, सब चुके मन वड भागी, गुर सत गुया गुण गाए, परमानंद रहा, साकत मूल माया के बदक विच माया फिरे भवंदे, तृष्णा जरत किरत के बाधे, जो तेरी बलद भौंदे, गुरमुख सेव लगे से उदरे, बटभागी सेव करन दे, जिन हर जपिया तिन फल पाया, सब टूटे माया फंदे, आपे ठाकरे आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे, जिन नानक आपे आप सब वरतै, जो राखे तिवे रहंदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राख फलार महला चौथा, पड़ताल कर तेरमा, बोलो पैया राम नाम पत पावन, हर संत भगत तारण, हर भर पुरे रहिया जल थले, राम नाम नित का पी हर दुख विसारण रहा, हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपिया हर दुख विसारण हारा, गुर पिटया है मुक्त का दाता, हर किए हमारी सफर जाता, मिल संगति गुण का अपनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिन पनासा, बिच आसा हुए पनास निरासी, सो जान मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण का अपनो, जन नानक तिस पागला अपनो, राख बिलावन महला पनमा, चौपदे कर पहला,

लाभ क्यों तरिये बिख्या संसार सदगुर बोहत पावे पार रहा पवन चलारे माया दे हर के भक्त सदा थिर से।

ब्रह्मशाया चंचल संगन चा ती सखिए अंत तज जावत माया रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख न पाया धन धन हरसाद जन सखिए नानक जिन नाम ते आया जय बसो वडभागनी सखिए संतां संग समाइए तै दुख न भूख न रोग प्यापे चरण कमल बिलाइए तै जन्म न मरण न आपण जाना नैचर सरणी पाईऐ प्रेम बिशोह न मोह प्यापे नानक हरेक त्याईऐ दृष्ट धार मन भेद्या प्यारे रतड़े सैस पाए से सुहावी संग मिर प्रीतम अनद मंगल गुण गाय सखी सहेली राम रंग राती मन तन इस पजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया कहना कछु न जाए राख बिलावर महला पनमा कार चौथा एक ओंकार सतगु प्रसाद एक रूप सगलो पसारा आपे बन जा आप विहारा

सेवा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आपे देवा, आपे जोग आपे जुगता, नानक के प्रसादी मुक्ता पिलाव महला पनमा। आप पावन आप सुतरना, आप करापन दोष ना लेना।

अपन मन। कवन जाने प्रभु तुमरी सेवा, प्रभु नासी रख पेपा, गुण पियंत प्रगैर गंभीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू परम्पर ठाकर मेरा। एक सबिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कृष्ण हो पाई, जिस प्रभ दे पै सो ना पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, कुण दान प्रभ तिन ही पाया। प्रभ महला पन्मा मात गर्भ हाथे राखिया, हर्ष छोड़ बिखिया प्रचाखिया, भज गोबिंद सब छोट जंजाला। जब जमाए संघारे मूड़े, तब तन बिंस होए बिहारा। तन तन तन अपना करम तापिया, करण हार एक निमुख न जापिया। महामोह अंध कूप परिया, पाप ब्रह्म माया पटल बिसरिया।

ममता मोह त्रोह मद माता बंधन बाध्या अत बिकरा दिंदन शेत बिकार करत औद फाथी फाथा जमके जाल।

मन मैं संचो हर हर नाम अंदर कीर्तन हर गुण काम ऐसी प्रीता करो मन भेरे आठ पैर प्रभु जानू निरहा।

श्रम करते दम अड़को ते गणितनीता कवन बडाई कह सको बेअंत गुणीता कर कृपा मोहि नाम त्यो नानक दर सरिता प्रार महला पंजवा अहंग बुद्ध प्रबाद नीत लोभ परसना साध लपट कपट ग्रह भेदया मिथ्या विख्याद।

तन छोड़ो त्याग रहा संतन का दाना रूखा सो सर्पन दान ग्रह सागत क्षति प्रकार ते बिखु समान भगत जना का लूकरा उड़ नकन होई

नाहि। एकस आके बिनती रपिया सर्वथाए, कथा पुरातन हिंसनी भक्तन की पाणी, सगर दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट, सब में सब माए प्रभु के सेवक शरण प्रभु, तैन को पो नाय प्राण महला पनमा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कुल हाथ, अबर कर्म ने छुटिया राखो हरनाथ। तो शरणात मत बेपूर्ण दयाल, छूट जाय संसार ते राखे गोपाल।

सब सुखी कैश उन्नत दिशा संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीशा। जय जयकार करे जय जयकार सभे करे स्थान सुहाया जप नानक नाम तान सुख पूरा गुर पाया। बिलाल महला पंजवा हर हर हर रातिये हुई है अरूक रामचंद की राष्ट्र का जन्म अरूक राम। गुर पूरा हर जापिय न कीजे फूक सा संत के वारण मिलिया संजोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन से वियोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण जोग। राग प्रलाद महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवरूप पासा त्यागया दारू नाम लिया ताप पाप सब मिटे सब मिटे रोग असी तन मन पिया गुर पूरा रात दिया सगला दुख गया।

राम राज राम दास पर किन्ने गुरदेव रहा सदा सदा हर प्रया केशव भगन राके नानक नाम सलाहिए पै दुष्ण पागे बरार महला पन्मा मान तन प्रभ राधिय मिल सा समागे उचित गुण गुपार जस दूर ते जम पागे राम नाम जो जन पै अंदन सजा के तंत मंत न जोई जित चाख न राखि रहा काम क्रोध मदमान मोह पिन सिंध राखे आनंद मकन रस राम न रंग नान सरना के ब्रह्म महला पन्मा जी जोगत बस प्रभु कै जो कै सो करना पै सो प्रसन्न गुपार राय ब्रह्म किश नहीं करना दुख न लाके कदे तुद पाप ब्रह्मच तारे जमका कने आपी गुरसिख प्यारे रहाउ करण कारण समर्थ है किश बिन नहीं होर नानक प्रसरणागति साचा मन जो प्रार महला पन्मा सिमर सिमर प्रभ रतना नाठा दुख टाव विश्राम पाए मिल सार संग ताते बोलन ताव

प्राव गुण गोविंद काबू सब हर जन राग रतन रसना लाप कोट जन्म नथ सनिपरी राम रसायन आत्म त्राप।

गढ़ में ऐठ हटीदो फूल फूल क्या पावत हे पंच तत् मूड पर ठांडे केस गहे फिरावत हे दिष्टने आपे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत हे जाल पसार चूक विस्तारी पंखी जो मुहावत हे कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत हे बिलार महला पनमा हर हर नाम अपार बोली प्राण प्यारे मन तारो चीत चितपो जैसे पात बोलिला सहज समय गुरिवता रंग रंगी मिर तन की चोले प्रेमुख लाको जो बट भागो सुहाग मारो कतो न डोले

딸이 비교 모하나 삽게 상게 운나 가후 사글파리 पूर्ण पूर रहो कृपा निद को नानक मेरी पूरी पई प्राण महला पन्मा मन क्या कहता हो क्या कहता जाल परपीण ठाकर प्रभ मेरे तसे आगे क्या कहता रहा अन बोले को तू ही सुपछाने जो जीव मह होता रे मन काय कहां लाग डह को

ऐसे ही चर परी है। इनसानी सुनो तुम पाई, जो काल भीत गिरिय रहा, जो देखे शिदर तो निंदक हमारे, परो देख दुख भरिय, आठ पैर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चित मरिय, निंदक प्रभुपला का नेड़े आया, हर जन सो बाद उचरिय, जनका राखाया पुस प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करिए, प्राण महला पनमा ऐसे काहे पूर परे, करे करावे मुखर पावे, पेखत सुनत सदा संग हरेरा, काच बिहाजन

दर्शन साधु कै जय प्रसाद हर नाम दीना कहो नानक ठाकुर भूसै काहू न मनियो छ काहू न मनियो मन चीना प्राण महला पनमा।

अपन मां सदा सदा जपिए प्रभना बहु जरा मरा कछ दुख न व्यापे आगे दर के पूर्ण काम रहा आव त्याग परियन सरणी गुरते पाइये उनतान जन जन जन मरण की कटिए फांसी साची दरगे का निशान।

पारा। शरण सम्राट एकात सुदाता कृपा सिंध पटु दियार। कंठ लाए राखे अपने को तित ना तिसन लगे ताती बार। दमोदर दया स्वामी सरबस संतना पनमार। नानक जाजक दर्श प्रभ मांगे संत जना के मिले पाप राल महला पनमा। सिमत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर कुण गाए। जम दूत को त्रासे रहा जेते पुने चरण के कीने मन तन प्रभ के चरण गए। आवन जन पन पो नाठा जन जन के करवख दहे। निरपो होए भजो जगदीसै एहो पदार्थ वटपाग लहे। कर कृपा पूर्ण प्रभदाते निर्मल नानक दास कहे प्राण महला पनमा। सुरही ते नारायण राख सुरही का हाथ कहु न पहुँचे सुरी हुआ। होए मुआ न पाक रहा

0: राग हो बिंद चौथे पद में है जन की जिंद ना ए हो मास ना हो दियो ना हे जति कहा वैसे ना हो जोगी ना अवधूता ना इस माए ना कहो पूता या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को पाई अव ना हो करे ना उदासी ना हे राज ना पीख मगासी ना इस पिंड ना रख तू राती ना हे ब्राह्मण ना हे खाती ना हो तपा कहा वै सेख ना हो जीव नम्रता देख इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत होवै गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया कहो कबीर हो राम की अंश जस कागद पर मिट नास हूं टूटे ता गैन कुटी पां द्वार उप चिलका मन कान कूंज बिचारे फूटे फाल आ मुंडिया सिर चढ़ बोकाल ए मुंडिया सगलो द्रव कोई आव जात नाक सर हुई रहो तुरी नार की छोड़ वाता राम नाम वाह का मन राता लड़की लड़कन खैब नाहे मुंडिया अंधन ताप जाहे एक दो मंदर एक दो बाट हमको साथ उनको खाट मुड़ बलोस कर बदबो थी हमको चाबन उनको रोटी मुड़िया मुड़िया हुई एक ए मुड़िया बूढ़त की टेक सुन दलील हुए बेपीर इन मुड़िया पाज सन कबीर हूं खसम पर तो नार ना रो वै उस रखवारा और हो वै रखवारे का होए विनाश अग नरकी हाँ भोगलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रा सुहागन गल सोहे हार संत को बिख विकसै संसार कर सिंगार भै पखियारी संत की ठिठकी परे विचारी संत भाग ओ पाचे पर गुर प्रसाद मरोंड रह सात की हो पिंड प्राण हम कौ श्रेष्ट प्रै तरक डायण हम तिसका बहुत जाने प्यो जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव को कबीर अब बाहर परी संसार है कह अंचल लरी ग्रह शोभा जा कहरी नाहे आवत पया खुद है जाहे वाक अंतर नहीं संतोख बिन सुहागण लग दो तन सुहागण महापभीत तपत भी सडोले जीत रहाओ सुहागन कृपन की पूती सेवन थ जगत सिंसूती साधु गठाड़ी दरबार संतरी मोक निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर चरकशन हरी जाओ लग प्राण ताओ लग संग नहाए ता चली बेकुट लंगे सुहागन परम तलिया दस आठ प्राण तीर्थ रस किया मनवा विस्मे सबे दे बड़े भूपत राज है छे दे सुहागन उर्वार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नाद के मिटवे बूटे कह कबीर गुर कृपा छूट है गूंड जैसे मंदिर में बलहार ना ठार है ना बिना कैसे पार उतरे कुंभ ना जल ना टिका वै साधु बिनु मैसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम न चेतै तन मन रमत रह मैं केतै रहो जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोई है सूत बिना कैसे मणि प्रोई है घुंडी बिन क्या घंट चढ़ाई है साधु बिनु तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बालना होई बिंब बिना कैसे कपड़े धोई घोर बिना कैसे अवसवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नाही लीजे फेरी खसम दुहागन तज हरी कह कबीरे कह कर करना गुरमुख होए बहोर नहीं मरना गुंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जब ते छूटे कुट कुट मन कसुटी लावे सो कूटन मुक्त बह पावे कूटन किसे करो संसार सगल बोलन के महे विचार रहो नाचन सोज मन स्यों राचै झूठ ना पति है परचै साचै इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन कै मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोद है पांच पलीत है को प्रबोध है नौ नायक की भगत विशान है सो बजारी हम गुरबान तस्क सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उतरे कह कबीर हम ऐसे लखन तन गुरुदेव अत रूप बिचखन धन गोपाल ਤਨ ਗੁਰਦੇਵ ਧਨ ਅਨਾਦ ਭੁੱਖੇ ਕਲ ਟਹਕੇਵ ਤਨ ਓਏ ਸੰਤ ਜਨੈਸੀ ਜਾਨੀ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨਾਦ ਜਪੇ ਨਾਮ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਧ ਰਹਾਉ ਜਪੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅੰਨ ਅਭੈ ਕੈ ਸੰਗ ਨੀ ਕਵਨ ਅਨ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵੈ ਤੀਨ ਭਵਨ ਮਹਿ ਆਪਣੀ ਖੋਵੈ ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਉਰਨ ਜਗ ਮੈਂ ਵਕਤੇ ਦੁੱਧ ਧਾਰੀ ਗੁਪਤ ਖਾਵੈ ਭਟਕਾ ਸਾਰੀ ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ ਤਜੀਏ ਅੰਨ ਮਿਲੇ ਕਪਾਲ ਕਹ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਣਿਆ ਤਨ ਨਾਦ ਠਾਕੁਰ ਮਨਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਵੈ ਲੈ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਮੇਧ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ਪਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਰਾਮੈ ਭਜ ਰੇ ਮਨ ਆਸੀਆ ਰਹਾਉ ਗਯਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸ ਵਸਤਾ ਮੁਖ ਬੀਦ ਚਿਤਰ ਪੜਤਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਸ਼ਿਤਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਘਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਤਾ ਸਿਵਾ ਸਕਤ ਸਵਾਦੰ ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦੰ ਭਜਨਾਮਾ ਤਰਸ ਪਵਸਦਿੰ ਗੋਡ ਨਾਥ ਭ੍ਰਮੈ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੇ ਵਾ ਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਰਾਮ ਛੋੜ ਚਿਤ ਅਨੰਤ ਨਾ ਫਿਰੋ ਰਹੋ ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੀਰੈ ਪਸੂ ਆਰਾ ਸੋਨਾ ਗੜਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਨਾਰਾ ਜਿਉ ਬਿਖਈ ਹੀਰੇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੌਡਾ ਡਾਰ ਥਿਰੇ ਜਵਾਰੀ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤੈ ਤੈ ਰਾਮਾ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨੋ ਨਿਤ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ ਗੁੰਡ ਮੋ ਕੋ ਤਾਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਜਨ ਤਰਵੈ ਨ ਜਾਨੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮੁਖ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜੀਤੋ ਸੋ ਅਬਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਹਾ ਜਹਾ ਤੂੰ ਨਾਰਦ ਟਿਕੇ ਨੈਕ ਟਿਕਾਵ ਮੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਬਿਲੰਬ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਤ ਇਹ ਗੌਂਡ ਮੋਹੇ ਲਗਤੀ ਤਾਲਾ ਵੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਪਾਰੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਪਰੋ ਨਾਮਾ ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਗਾਇਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੂਟਲਾ ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਘੂਟਲਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਜੈਸੇ ਵਿਖੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰਾਰੀ ਜੈਸੇ ਤਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਘਾਮਾ ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਰਾਗ ਗੌਣ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀਉ ਕੀ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਪਰਮਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਉੱਤਮ ਧਰਮਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਜਾਤ ਕੁਲ ਹਰੀ ਸੋ ਹਰ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਹੇ ਨਮਹਿ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮੈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਕਸ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਜੈ ਮਲਕਿਓ ਬੈਕੁੰਠੈ ਥਾਨ ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ ਸੋ ਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ਬਾਲ ਘਾਤ ਨੇ ਕਪਟੈ ਭਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰੋਪਤ ਸੁਤੁਦਰੀ ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨਗੀਆ ਜੀ ਅਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੌਦੀਆ ਪ੍ਰਮਿਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ਜਸ ਜਪਤ ਪੈ ਅਵਤਾ ਤਰੀ ਗੌਂਡ ਪਹਿਰੋਂ ਪੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ਖਰ ਬਹਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉੜਾਵੈ ਹਉ ਤੋ ਏ ਕਰਮਯਾ ਲਹੋ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਹੋ ਰਹੋ ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ ਬਰਦ ਚੜੈ ਡੌਰੂ ਡਮਕਾਵੈ ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਨਰ ਸਹਿ ਨਾਰ ਹੋਏ ਓਤਰੈ ਤੂੰ ਕਹਿਆਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ਪ੍ਰਣਮੈ ਨਾਮਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਗੀਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਗੁੰਡ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लै कर ठेगा टगरी लोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़या, आवत देखा था मोदी के घर, खाना पाका बाका लटका मारिया था। पांडे तुमरा राम चंद सो पी आवत देखा था, रावण सेती सरबर हुई, घर की जो एक गवाई थी, हिंदू अन्ना तुरकू काना, दोहा ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजे त्योहरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या जह दौरा ना मसीत, रा गौंड बाणी रुदास जियो की कर दूजा है क्योंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिना मुकंद तन हुए होहार, सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता, जीत मुकंदे मत मुकंदे तां के सेव को सदानंदे, रहा मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करे बरागी, सोई मुकंद दुलब तन लादी, एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहाँ करे संसार, मेटी जात हुए दरबार, तो ही मुकंद जोग जोतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, कर कृपाल इन्हें कीट दास, कौरव दास अब तिसना चूकी, जब मुकंद सेवा थाऊगी, गौंड जे हो आठ सठ तीर्थ नावै, जे हो द्वादश सिला बजावै, जे हो कूप तटा दिवावै, करे निंद सब व्यर्था जावै, साध का निंद को कैसे तरै, सर पर जहनो नरक ही पर रहो, जे हो ग्रहण करै कुलखेत, अर्पै नार शिगार समेत, सगली सिमरत सरमनी सुनै, करै निंद कवने नहीं गुनै, जे हो अनक प्रसाद करावै, भूम दान शोभा मंडप पावै, अपना विकार बिराना सांडै, करै निंद बहु जूनी हांडै, निंदा कहाँ कर हो संसारा, निंद का प्रटक पहारा, निंदक सोध साध विचारिया, कौरवदास पापी नरक सुधारिया, राम कले महला पहला, कर पहला जपते ओंकार सतनाम, करता प्रकृत पवन निर्वैर काल मूर्त जुने सह गुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े पराना, कोई नाम जपै जम पाली लागे तिसे ध्याना, अब ही कब ही कृष्ण जाना, तेरा एको ना पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन कथे, हम मूर्ख ज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते, रहा कबू जीड़ा ओब चढ़त है, कहूँ जाए प्याले लोभी जीड़ा, तिर ना रहो है चारे कुंडा पाले, मरण लिखाए मंडल मह आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाए बलंती आई, ना किसी का मीत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना भाई, प्राणतनान को जे तू दे वे अंते हुए सखाई, राम गली मेरा वेला सर्व जोत तेरी पस रही, जह जह देखा तह नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी, अंध कूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतर हो पार स्वामी, रहो जय पीतर कट पीतर वस्या, बाहर काहे नाही तिन की सार, कर नित साहेब सदा चिंत मन वाही, आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्वरे भरपूर, सतगुर मिलै अंधेरा जाए, जय देखा तेरा समाए, अंतर सहसा बहर माया नैनी, लागस बाणी प्रमत नानक दासन दासा, प्रताप पहेगा प्राणी, आराम कली महला पहला, चित दर बसे कमल दर कहिए, धरा पीतर दर कमल है, जिस दर का न फिर उदासी, सो दर कोई आए कहे, किन बिद सागत रिये, जीव त्या नर मरिय, रहो दुख दरवाजा, रहो रखवाला आसा देसा, दोए पड़जड़े माया जल खाई, पानी करवा दिया सत कह आसन परखुरा है, किते नामा अंत न जानिया, तुम सर नाही अबर हरे, उचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जाने आप करे, जब आशा अंदेसा तभी क्यों कर एक कह, आशा पीत रहे नरसा, तो नानक एक मिलै, इन बिद सागर तरी है, जीवत आ उमरी है, रहो दूजा राम कली मला बला सुरत सब साखी मेरी सिंगी वाजै लोक सुने पत झोली मंगण कह ताई भिख्या नाम पढ़े बाबा गोरख जागै गोरख सो जिन गोई उठाली करते बार न लागै राहो पानी प्राण पवन
1: सिद्ध साधक अरजोगी जंगम पीर पुरश भक्तेरे जीतन बिना तकीर ते अखा तामन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिलह जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जुग को पाले आप तरह सगले कुल तारे सो अतूत ऐसी मत पावे एन सुन समाध समावे रहाओ पिख्या पाए भगत पै चले हो वैसो त्रिपत संतोखे मल्ले ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे नानक बोले अमृत बाणी सुन वाशिंद्रा औदू निशानी आसा महेंद्रा स्वै लाए निचो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मिलाए दीख्या दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोझी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध पेटन को आए निचो दे वड्याई गुर तार तारन हारिया देहे भगत पूर्ण अविनाशी हों तुझको बलहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी ते आया परसत पैर सिज्जत ते स्वामी अखर जन को आया जब तब संजम कर्म न जाना नाम जपी प्रव तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचा शब्द न बेरा राम कली महला पहला सुरती सुरत रलाई एत तन कर तुल्हा लंघ जीत अंतर पाह तिसै तू रख ऐन सुदीवा बड़ै अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवै सब सोजी पाए रहाओ हच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया मन सोए करनी ते कर चकों ढाल ऐथै उथै निभै नाल आपे नदर करी जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए तित कट दीवा न चल होए पानी मरे न बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोलै वाओ न वड्डा होए चापै ज्यों सिंघासन लोए खत्री ब्राह्मण शूद के वैश नृत न पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सूपा रंगत होए राम कली महला पहला

दुख सुख सम करुणा सोग वियोगी भुगत नाम गुर शब्द बिचारी अस्थिर कंध जपै दंकारी सहज जगूटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंद्रा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सत गुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सत जुग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई। सत जुग धर्म पैर हैं चार गुरमुख बूझे को बिचार जुग चारे नाम वडियाई होई। जी नाम लागे सो मुक्त होवै गुर बिन नाम न ना पावै कोई रहो। त्रेतै एक काल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जानन दूर गुरमुख बूझै सो जी होई अंतर नाम वसै सुख होई।

माटी का क्या थोप स्वामी, मानस की गत ही मेरे मन, सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर दुख न व्यापै कोई, रहाओ काचे भांडे साजन वाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करतै, हम तैसी किरत कमाई, मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दी आसो चित न आवै मोह अंध लपटाणा, जिन की आसो ई प्रभ जाणै, हर का मैल पार, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा। पवो चरणा तले ऊपर आवो, ऐसी सेव कमाओ, आपस ते ऊपर सब जानो, तो दरगह सुख पावो, संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, किन बोलो कुरमुख बाणी रहाओ, पर पंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुर मिलो नवै निध पावो, इन बिद तत बिलो ही, भरम चुकावो गुरमुख लिबलावो, आत्म चीनो भाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस्यो करो बुराई, सतगुर मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी, धन धन से जन जिनी कल मैं हर पाया, जा नानक सर कुरबानी। राम कली महला पंजवा। आवत हरख

रहाउ आकार मंडली धरण सबाई ऊपर गगन चंदोआ। आकार मंडली धरण सबाई ऊपर गगन चंदोआ, पवन विचोला करत अकेला जल ते ऊपत हुआ। पंच तत् कर पुतला किया, पंच तत् कर पुतला कीना किरत मिलावा हुआ। चंद सूरज दुए जरे चरागा, चौकुंट पीतर राखे दस पातों पंच संगीता एक पीतर साथे। भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै सबो नरारी पाखे। कर कर निरत होवै दिन राती, घट घट वाजै तूरा एक नचावै एक पवावै एक आए जाए हुए तूरा। कहो नानक सो बौर न नाचै जिस गुर भेटै पूरा। राम कली महला पंजवां।

सोते आए पूरा जिस कर्मा। तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरे, तुद बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ। जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दर्ग है पावो ठाओ। दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन से रच हर नाए। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत। पौ पागा निर्मल मन वसे, अमृत नाम रसना नित जपे। कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे। तोड़ न आवे अखट भंडार, नानक भगत सोहे। हर द्वार राम कली महला पंजवा, तनंज वेहर नाम। सत संतोख ज्ञान सुख सहज, दया का पोता हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार, खात खर्च कुछ टूट न आवे अंत नहीं। हर पारावार रहाओ, कीर्तन निर्मोलक हीरा। आनंद गुणी गहीरा, अहनद बाणी पूजी। संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाद गुफा तह आसन। केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ट करत। तह हरख न सोग न जन्म न मरत, कर कृपा जिसे आप दवाया। साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास। हर मेरी वर्तन हर मेरी रास, राम कली महला पंजवा। मेहमाना जान है वेद, ब्रह्म नहीं जानस भेद। अवतार न जान है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गत आप जाने, सुन सुन अवर बखाने रहाओ। संकरा नहीं जान है पेव, खोजत हारे देव। देवियां नहीं जाने मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल, आप बिछोड़े आपे मेल। एक परमे एक भगती लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। नहीं लेप तिस पुनना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा, किसहु काज न कियो जान। सुरत मत नाही किस ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म। कछु न जानो कैसा कर्म, ठाकर प्रीतम सब मेरे। तुझ बिन दूजा वरना कोई, भूल है चूक है प्रभ तेरे। रहाओ रिद्ध न बुद्ध न सिद्ध प्रगास।

रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊच अपार, सो मत सार जित हर सिमरीजे, कर कृपा जिसे आपे दीजे, सुख सहज आनंद हर नाओ, नानक जपया गुर मिल नाओ। राम कली महला पंजवा, सगल सियान पछाड़, कर सेवा सेवक साज, अपना आप सगल मिटाए, मन चिंदे सी फल पाए। हो सावधान अपने गुरस्यों, आसा मनसा पूरन होवे, पावे सगल निधान गुरस्यों रहाओ। दूजा नहीं जाने कोए, सतगुर निरंजन सोए, मानख का हर रूप न जान, मिलया न माने मान। गुर की हर टेक टकाए, अवर आसा सबला है, हर का नाम माग निधान, ता दर्श दा दरगह पावे मान। गुरु का वचन जप मंत, एहा भगत सार तत, सतगुर पै दयाल, नानक दास निहाल। राम कली महला पंजवा, होवे सोई भल मान, अपना तज अभिमान, दिन रैन सदा गुण गाओ, पूरन एही सो आओ। आनंद कर संत हर जप, छाड़ सियानप बहु चतराई, गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर, निर्मल जप नाम हर हर, गुर के चरण नमस्कार, भव जल उतर है पार, देवन हार दातार, अंत न पारा बार। जाके कर सर्व निदान, राखन हार निदान, नानक पाया इहो निदान, हरे हर निर्मल नाम, जो जपे तिस की गत होए, नानक कर्म प्राप्त होए।

छिड़ाई। राम के गुण गाओ हलत पलत हो है दोमे सहेले चर्ज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन से सगल संताप बैरी सब होब है मीत निर्मल तेरा होवे चीत। सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होवे उधार जन्म जन्म का उतरे भार।

ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮੀਜੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਮਾਨ ਆਪਣ ਲਾਹੇ ਗਮਾਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਹੀ ਅਰਾਧ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਾਹੇ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਬੇਗਾਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੇ, ਰਹਾਉ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਮਾਨ ਲੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਮਾਨੇ ਰਲ ਹੋ ਵਹੇ ਖੇ, ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੇ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਰਲੇ ਮਨ ਬਿਊਠਾ। ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਅਗੋਚਰ ਆਪ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਏ ਬਿਨ ਸਹੇ ਦੁਖਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੇਰਾ ਉਜਲ ਮੁਖਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਧਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗਣਨ ਨਾ ਜਾਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਬੂਢਤ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਪ ਭਗਵੰਤ, ਮਨ ਮਹਿ ਜਾਪ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹੋ ਦੀਨੋ ਮੰਤ, ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਭੈ ਤਰਾਸ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ, ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੀਮਤ ਕਿਛੁ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਭੇਵਾ ਰਹਾਉ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਪ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਤ, ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਤ ਭਾਰਾ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ ਜਪ ਜਾਪ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਰਥਾ ਪਰਵਾਸਾ ਲੋਕ, ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਅਵਰ ਛੂਟੀ ਸਭ ਆਸ, ਅਚਿੰਤ ਠਾਕਰ ਭੇਟੇ ਗੁਣਦਾਸ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਰ ਚਰਨ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਉਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੈ ਹੈ ਜੀਵ। ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕਰਤ ਨਿਧਾਨ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਿਧਾਨ, ਸਰਬ ਕੀ ਰਹਿਣ ਹੋ ਬੀਜੇ, ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਮਿਲੀਜੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਧਿਆਈਏ ਨਾਮ, ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਕਾਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਰਹੀਮ, ਅਲ ਹੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਖੁਦ ਖਦਾਏ ਬਡ ਵੇ ਸਮਾਰ। ਓ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗਸਾਈ, ਖਾਲਕ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਰਹਾਉ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ, ਭਉ ਭੰਜਨ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਅਰਾਧੋ। ਰਿਖੀ ਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੂਰਨ ਸਰਵਤਰ ਮੋਕੰਦ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੇਖ, ਦਿਲਾ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ, ਕਰਾਨਕ ਤੇਵਤੇ ਪਾਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਏ, ਲੀਲਾ ਕਿਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇਹੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ, ਏਕੋ ਅਲਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਣਸੇ ਪਾਪ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਵਸੇ, ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਨਸੇ, ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਜਸ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਰਹਾਉ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਨਾਸੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪਿਆ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਮਾਨੀ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਸਭ ਸੇਵਕ ਮਾਨੀ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਿਟੇ ਜੰਜਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਬਣਿਆਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਾਸ ਕੀ ਰੈਣ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
दर्शन को जाइए करवान, चरण कमल हृदय धर ध्यान, धूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेटत मिटे अभिमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ। गुर की कीरत जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर वचनी संसार सुख दुख, कदे न व्यापे तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर गाजे, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़ दे सब काजे, गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर दाता दयाल बख्शेंद, गुर चरनी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूरन भागा। राम कली महला पंजवा, किस परवासे बिच रहे पवन, मूड मोवद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जान है, पंच बटवारे से मीत कर जान है मन है, सो कर सेव जित उधर है मीत, गुण गोविंद रवि है दिन राति, साध संग कर मन की प्रीत, रहाओ जन्म बिहानो अहंकार अरबाद, त्रैपत न आवे बिखया साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाई दुतर माया, काम न आवे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखन को दूसर नहीं कोए, तो निस तरे जो कृपा होए, पतत अपनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को कीजे दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी। राम कली महला पंजवा, ए लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया, हर दरगह शोभावंत, फुन गर्व ना ही बसंत, जानी संत की मृताई, कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाओ, गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सुभागा, संत की तूर लागी मेरे माथे, किलविख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध प्राणी, जन का सफल दर्स डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूठा, मिटाने सब कल कलेस, जिसते उपजे तिस मह प्रवेश, प्रगटे अनूप गोविंद, प्रभु पूरे नानक बखसेंद। राम कली महला पंजवा, गौ को चारे सरदूल, कोडी का लख हुआ मूल, बकरी को हस्ती प्रतपाले, अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे, वर्ण साकू बहु गुण तेरे, रहाओ दीसत मास न खाए विलाई, महाकसाव शुरी सट पाई, कर्ण हार प्रभ हृदय बूठा, फाथी मछली का जाला टूटा, फसी फाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अगण निवारी सतगुर देव, सेवक अपनी लायो सेव, अकृत घना का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई। राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बघियाड़ी लई निवार, तीन अवरात की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोविंद, कर कृपा राखो दास अपना, सदा सदा साचा बखसेंद रहाओ। धाज गए त्रिण पाप समेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुख मान, सागर तरयो बाशर खोज, खेद न पायो नह फून रोज, सिंध समायो कुटके माहे, करन हार को किश अचर्ज नाहे, ज्यों छूटो तो जाए प्याल, ज्यों काढ़ो तो नदर निहाल, पाप पुन हमरे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली महला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया मोह व्याप्या तोहे, कुदम करे गाडर ज्यो शेल, अचिंत जाल काल चक्र पेल, हर चरण कमल सरनाए माना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साच तना, रहाओ उने काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे विकार जियर रे कहताई, गाफल संग ना तसुआ जाई, धरत तो अनक शल जाने, कोडी कोडी को खाक सिर शाने, जिन दिया तिसे ना चेते मूल,
मिथ्या लोभ ना उतरे सूल, पार ब्रह्म जब भय दयाल। एहो मन होवा साधरवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए। नानक साचे साच समाए, राम कली महला पंजवा। राजा राम की सरनाए, निरभउ भय गोविंद गुण गावत। साध संग दुख जाए, रहाओ जाके राम बसे मन माही। सो जन दूतर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने। हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर धरे। सो दास अदेसा काहे करे, जन्म मरण की चूकी कान। पूरे गुरु ऊपर करवान, गुरु परमेश्वर भेट निहाल। सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करे। साध संग सो भव जल तरे, अमृत पीव हो साध प्यारे। मुख उज्जल साचे दरबारे, आनंद कर हो तज सगल विकार। नानक हर जप उतरो हो पार। राम कली महला पंजवा। ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिस त्यागे। ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो प्रगास। ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न विसरे जिय भगतन कै। आठ पहर मन ता को जाप, रहाओ प्रथम माखन पाशे दूध। मेलो कीनो साबन सुध, भय ते निरभउ डरता फिरे। होदी को अनहोदी फिरे, देही गुप्त देही विदेशी दिसे। सगले साज करत जगदीसे, ठगन हार अण ठगदा ठागे। विन वखर फिर उठ लागे, संत सभा मिल कर हो बिखान। सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार बिचारे कोए। नानक ता की परमगत होए, राम कली महला पंजवा। जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई। प्रभ बिन नाहि आन बिया, रहाओ पूत कलत्तर। लक्ष्मी दिसे इन महे, कशुना संग लिया। बिखे ठगोरी खाए भुलाना, माया मंदर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत बिगूता, गर्भ जोन महे किरत पया। पूर्व कमाणे छोड़े नाही, जमदूत ग्रस्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अबरा, तृष्ण बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजया, संत दुखन देह विनासी महा खया। जिन है निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया। राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुर देओ सहाई। जाका सिमरन बिरथा ना जाई, रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल। जा की धूर काटे जमक जाल, चरण कमल बसे मेरे मन के। कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ। प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण कृपा निदान। सदा सदा जाइए करवान, निर्मल मंत दे जिस दान। तजहे विकार बिन से अभिमान, एक त्याइये साध कै संग। पाप बिनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास। घट घट रव रहा गुणतास, दर्श देहे धार्यो प्रव्यास। नित नानक चितवे सच अरदास, राम कली महला पंजवा। का दूजा दो पदे एक ओहकार, सतगुर प्रसाद गाव हो राम के गुण गीत। नाम जपत परम सुख पाइये, आवा गौन मिटे मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल मह होए निवास। संत संगत मह होए उदार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरु पूरा मेरा गुरु पूरा। राम नाम जप सदा सहेले, सगल बनासे रोग कूरा। रहाओ एक रद हो साचा सोए, जाकी सरन सदा सुख होए। नींद सहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन से सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुर पूरे सब चिंत मिटाई। आठ पहर प्रभु का जप जाप, नानक राखा हुआ आप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल घर तीजा एक ओहकार, सतगुरु प्रसाद। नर नहै नमस्कारंग, जलन थलन बस गगन एक एकंकारंग। रहाओ
हरन धरन पुन पुनः करन नह ग्रह नरहंग हारंग गंभीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारंग करन केल गुण अमोल नानक बलिहारंग राम कली महला पंजवा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया छले कनक काम निरहाउ भंडार दर्ब अरब।

फुन बैकुंठ सिधावे अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई। जागत को जोगी सर्वाशत सोगत शिन मह पाई। नाहन गुण नाहन कशो विद्या धर्म कौन गज की ना। नानक बिरद राम का देखो हो अवे दान तह दीना। राम कली महला नावा साधु कौन जुगत अब कीजे। जाते दुर्मत सगल विनाशे राम भगत मन पीजे। रहाओ मन माया मह उर्ज रहो है बूझे ना कुछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा। पहे दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई। सर्व धर्म मानो तह किए जह प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निस्वासर मह निमक एक और तारे। जम को त्रास मिटे नानक तह अपनो जन्म सवारे। राम कली महला नावा प्राणी नारायण सुध लेहे। शिन शिन औध कटे निस्वासर वृथा जात है दे। रहाओ तरनापो बिख्यान स्यो खोयो बालपन अज्ञाना। बिरद पयो अजहू नहीं समझे कौन कमाते और जाना। मानस जन्म देव जह ठाकर सोते क्यों बिसारियो। मुक्त होत नर जाके सिमरे निमख ना ता को गायो और

इस मन की बिरथा तुम ही आ गए सारना। तू दाता सवना जिया का अपन किया पालना, अनक बार कूट जाने ऊपर नानक भंजे बारना। राम कली महला पांचवा अष्टपदी एक ओहंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन भेटत पाप सब ना सहे हर स्यों दे मिलाई, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए। अंते हुए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा, पन्ना संत धूर मुख लाई पतत पनीत किए खिन भीतर अगन अंधेर मजाई। कर्ण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दड़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका बौड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पीत्र प्याई, संत संग मिल कीर्तन गाया नह चल।

ओहकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सह सेती, मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गा बणियां।

नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब बजाइया सदा करवान कीता गुर विट हो जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे, कहे नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवे बिन दे निमाणी लिवे वाजो, क्या करे विचारिया तुद वाज समरत कोए नाही, कृपा कर बनवारिया ईस नाओ होर थाओ नाही, शाब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जिन का मोह टूटा तिन का शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिस नू होर क्या करे विचारिया, एक भरम भुले फिरे दह दिस एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे ओ कथ की करे कहानी, करे कहानी कथ केरी कित द्वारे, पाइये तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए, पाइये हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी।